फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव मैक्सेट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी दिन के ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 315। 6:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको सुनवाएंगे गायक और कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7 सुनाए जाएंगे भोले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। 8:15 पर सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष लेखक मिलिंद सबनीस प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर प्रस्तुति रमेश गोखले की। श्रोताओ इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। दिन में 10 पिटारा लाएगा हेलो फरमाइश प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। दिन में 11 आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 समाचारों का होगा। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। 1 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 वंदे मातरम एक जय घोष लेखक मिलिंद सबनीस प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक भाग 46 आज आपको सुनवाएंगे। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3 आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम और शाम 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा रिहाई लेखिका अलका सिन्हा प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आप सुनेंगे। आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7 सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 11वां भाग आपको सुनाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात 8 हवा महल कार्यक्रम में सुनेगा झलकी बीवी ब्यूटी क्वीन। लेखक शरद सिंह और निर्देशन अजीमुद्दीन का है। रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर। 10 सुनिएगा छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूर्ख, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को यह वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाहिए, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

0: आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। उदाहरणों सहित इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आमिर खान की गायकी में चैनदारी और विलंबित बढ़त का मौलिक रूप अत्यंत लुभावना है। ख्याल चाहे विलंबित हो या द्रुत, चिंतन का क्रम व चैनदारी बराबर बनी रहती थी। इसी विशेषता ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। आमिर खान साहब को यह प्रेरणा जहां बहरे अब्दुल वहीद खान से मिली, वहीं कूट तानों व मेरुखंड की प्रेरणा भिंडी बाजार वाले अमान अली खान साहब अमर से प्राप्त हुई। देवास के प्रोफेसर अमानत खान साहब तान कहते कहते सहसा एक स्वर पर ठहर के पुनः तान कहने लग जाते थे। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। यह अंग आमिर खान साहब को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने देवास के रजब अली खान के कूट तानों के साथ अवरोही के तानों के साथ गायकी के अनेक अंग आत्मसात किए। जरब और जवारी बहरे अब्दुल वहीद खान की उन्हें पसंद आई। साथ में छूट कह जाना आमिर खान साहब को बहुत भाया। आमिर खान साहब बचपन में उस्ताद बाबू खान साहब बीनकार के साथ हमारे ग्रैंडफादर गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज बच्चू बाबा के यहाँ आया करते थे। यहाँ उनकी सीट थी, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोसाई जी के नाम पर एक बंदिश भी बनाई, जिसमें मध्यलय में ख्याल का अंदाज मालूम होता है। तो अब मैं वो बंदिश आपको गाकर सुना रहा हूँ।

केवल गायक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अच्छे रचनाकार होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ में हर अंग को गायन में यथोचित स्थान देना चाहिए। पहले गुरुजन शिष्य की साधना और उसकी गायकी के हर छोर, हर पहलू पर ध्यान देते थे। गायकी के साथ साथ उसे बंदिशों को कहने का अंदाज सिखाते थे, बंदिश कैसे बनाई जाए इसकी शिक्षा देते थे। इन सब बातों के लिए पेशेंस चाहिए। उस्ताद अमीर खान साहब बहुत अच्छे रचनाकार थे। वे सुररंग तखल्लुस मुद्रा या उपनाम से गाते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर रचना जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ उनकी पत्नी का इसमें योगदान लिए हुए है, तो प्रस्तुत है राग यमन कल्याण में वो बंदिश जो मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, जिसमें गाय

पृथ्वी के अनेक अंग हैं, जैसे बल, पेंच, गमकतान, जरब, जरब से गमकतान, छूट, फिरत, कंपित, अंदोल और मेरुखंड आदि का उज्ज्वल उदाहरण लिए हुए हैं।

0: संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता कार्यक्रम में सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अनलिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एशियन खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as a globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
3: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the Commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by Commission by 11 a.m. today. The Commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The examination was held on the 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passport Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. In a remarkable twist in regional fisheries trade, Hilsa, once imported into India from Bangladesh, is now being exported from India to Bangladesh. Central Inland Fisheries Research Institute, CFRI, has confirmed that nearly 500 tons of Indian Hilsa have moved across the border in the past 2 months, with traders anticipating another 150 to 200 tons soon. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas final operation clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircrafts to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv next-generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. Jammu and Kashmir government has accorded administrative approval for the development of a state-of-the-art tribal tourism village at Behri Kasab in Mendhar area of Poonch district. The project aims to showcase the rich tribal culture and heritage of the region while strengthening local infrastructure and creating new economic opportunities for the local youth. The tribal tourism village is envisaged as a dedicated destination that will highlight the distinctive cultural traditions and way of life of the tribal communities while providing an added attraction for visitors to Poonch. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20I to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl. And that is the end of this news bulletin.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा कुंवर रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह बलिदान दिवस पर और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली के यशोभूमि में कल सेमिकॉन 2026 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री राज्य पवेलियन का भ्रमण कर स्वीडिश एवं जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के अवसरों, प्रौद्योगिकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत पर प्रदेश के सभी जिलों और 845 ऐतिहासिक और महत्व के स्थलों पर 3,55,00,000 दिए एक साथ जलाए गए। उज्जैन में ही 33,27,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। उज्जैन के शिप्रा के रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उज्जैन वासियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज मध्य प्रदेश में हमने उनके सपने को साकार करने का प्रयास किया है। अब प्रदेश के सभी गांवों में 50,00,000 से अधिक लोगों को, जिनके मकान खेत खलिहान के पट्टे हैं, उनकी रजिस्ट्री करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिहार क्षेत्र से आते हैं और बिहार और मध्य प्रदेश का अपना एक पुराना संबंध रहा है।
2: तो हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी हमारा पवित्र संकल्प दीप प्रज्वलन के बिना होता ही नहीं। हमारे इस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः विराजे हैं, हमारा आपका उनका एक विशेष संबंध भी है। आप बिहार से आते हैं और राजा भोज उस अतीत के काल में, जब यहाँ वो खराब समय था, तो उस काल में हमारे मालवा के लोग अपने बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में गए, इसलिए आज भी वहाँ के शासक उज्जैनी ठाकुर भी कहलाते हैं और ये भोजपुरी भाषा से हमारा वो मध्य प्रदेश का संबंध भी जुड़ता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में 388 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 8,684 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविरों के साथ रक्तदान के प्रति जन जागरूकता, शपथ एवं अन्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लोक भवन में आयोजित स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जहां 77 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और महत्व के स्थानों पर दीप प्रज्वलन भी किया गया, जिसमें ग्वालियर जिले के 11, इंदौर के 32, भोपाल के 21 और कई अन्य जिलों के आइकॉनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए। इंदौर जिले में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन 350 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं देवास में 25,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की उपस्थिति में 6,00,000 से अधिक दिए जलाकर सेवा का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार सतना, खंडवा, आगरमालवा, मंडला, रायसेन, सागर, छतरपुर, अलीराजपुर, डिंडौरी, बैतूल, अशोकनगर, नीमच सहित प्रदेश के सभी जिलों में सेवा के संकल्प के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर सागर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़कर संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धान, गेहूं और ज्वार के साथ नकदी फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात है। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 169वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद वे जनजातीय समाज के गौरव पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और उपस्थित जन समुदाय तथा आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने कल तेलंगाना के थिम्मापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी जा रही है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण लेने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाने से लाभार्थियों को आगे अधिक ऋण लेने, अपना क्रेडिट रिकॉर्ड बेहतर करने और बैंकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिली है। इस संवाद में देश भर से 200 से अधिक मुद्रा योजना के लाभार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट 2026 की जून की परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन

क्यूआर पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डाक विभाग देशभर में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामलों को कम करने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और ई कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। अभियान का तैयारी चरण इस महीने की 15 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। अशोकनगर की ग्राम पंचायत ककराई में आज मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल जिला अस्पताल के ग्राम सिरपुर और ओंकारेश्वर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा मिशन जीवन रक्षक अभियान की शुरुआत कल से हुई। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत अमथनू में 7वां जनसंवाद शिविर आज आयोजित किया जाएगा। डिंडोरी की जनपद पंचायत बजाक के ग्राम पंचायत बोंदर में आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर ही सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में अलबेला फिल्म का ये गीत था। राजेंद्र कृष्ण की रचना आपने सुनी, श्री रामचंद्र का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
0: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
5: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
0: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में देवता फिल्म का गीत आपने सुना। गुलजार की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, गुलजार के बोल खय्याम की तर्ज।

फकीरा फिल्म का दो गाना था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मजरू सुल्तानपुरी की रचना संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म परवरिश का गीत आपने सुना।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार की।

फिल्म अवतार का ये गीत आप सुन रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार उड़ीसा उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
6: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
8: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
6: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी

0: आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता मंत्रालय ने निजता नीति बदली पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा सरकार लाई प्रस्ताव उठकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की बिहार ओडिशा उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज गुड मॉर्निंग आई एम वीसी प्रमोद द हेडलाइंस इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Oruproy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
5: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent members from the Lok Sabha include Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja, and Supriya Sule. From the Rajya Sabha, Harshvardhan Shingla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel, and Menaka Goriswamy are among the members of the committee. The committee is required to submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
3: The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website https://ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on the September 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. The agency had earlier issued a notice on August 16, 2026 regarding the conduct of the test. Candidates who appeared in the examination can now log in to the registration portal using their application number and password to view the final answer keys of their respective subjects. The NTA has advised all candidates to visit the official UGC Net website regularly for the latest updates related to the examination. For any clarification, candidates may contact the NTA help desk through the contact details provided on the website. The Finance Ministry will organize a two-day conference on financing India's journey towards Vikasit Bharat in New Delhi, beginning today. The ministry said that the conference will be held for finance ministers and finance secretaries of the states and union territories. Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with several chief ministers and finance ministers from the states, will be present during the conference. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public life. His journey has been defined by the mantra of service to the nation through public service and continued dedication, which remains steadfast even today. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of a developed India by 2047. This commitment, through inclusive development and social empowerment, is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the end of Naxalism.
6: In Chhattisgarh's Bastar region, following the end of Naxalism, the sound of school bells is once again being heard in place of gunfire. Security camps in the Bastar region are being transformed into modern public service centers named Shaheed Veer Gundadhur Seva Dera. Bastar Olympics and Bastar Pandum reflects the changing picture of Bastar. Prime Minister Narendra Modi said that areas which once witnessed terror are now providing opportunities for talent.
7: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं बस्तर ओलंपिक्स की धूम है यानी जहां कभी टेरर था
6: The government's firm resolve has resulted in thousands of Maoists surrendering in Bastar. Efforts are now being made to make these former Maoists economically self-reliant by providing them skill training. One such former Maoist, Lakhmu Poyam of Bastar district, said that while working with the Naxalite organization, he always lived under the fear of losing his life. He is now undergoing skill training and leading a peaceful life. After surrendering, we are living here now and we feel good. When we were there, we always lived in fear that we might be killed or shot. Here, we can eat, drink, sleep and work peacefully and meet and interact with everyone. We feel good living here. The stories of hundreds of surrendered Maoists like Lakhmu Poyam show that following the end of Naxalism, a new dawn of development is emerging in Bastar. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
3: This is Akashwani giving you the news.
0: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
3: External Affairs Ministry has notified the Passport Amendments Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft, Tejas Final Operational Clearance twin-seater trainers and HTT 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. The Defense Ministry said the visit reflects the importance attached by both the countries to sustained military diplomacy and army-to-army engagement. The Trump administration has approved visas for top Iranian officials, including

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। नई सुबह नए पैगाम लेकर आती है श्रोताओं। आकाश में सूर्य की लालिमा मंद मंद सी बयार और आपके घर आंगन में गूंजती विविध भारती की सुरलहरियां आपकी सुबह को खास बनाती हैं। इन्हीं सुरलहरियों पर आ चुका है कार्यक्रम चित्रलोक आपके रेडियो सेट पर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तुरस के बोलते संजय लीला भंसाली की तर्ज श्रेया घोषाल स्वरूप खान और साथियों को आपने सुना फिल्म पद्मावत में। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म 22 डेज़।

अरिजीत सिंह की आवाज थी राज शेखर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे जसलीन रॉयल की तर्ज थी हिचकी फिल्म का ये गीत आपने सुना विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद

सतेंद्र त्रिपाठी की आवाज में योगेश की रचना आपने सुनी। प्रदीप कुंवर का संगीत था। अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज भारतीय सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। शबाना आजमी मशहूर कवि और गीतकार कैफी आजमी और रंगमंच अभिनेत्री शौकत आजमी की सुपुत्री हैं। 1974 में शबाना आजमी ने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से फिल्मों में शुरुआत की, जो आगे चलकर समानांतर सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री भी मानी गई। यथार्थवादी चित्रण को उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों के जरिए सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समय के मशहूर अभिनेताओं के साथ सफल फिल्में दी, जिनमें संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना भी थे। फिल्म जुनून, निशांत, मंदी, शतरंज के खिलाड़ी, मकड़ी, स्पर्श, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, फायर, गॉड मदर, ये उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में से हैं। शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों को भी उन्होंने अपने नाम किया। 1998 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। शबाना आजमी जाने माने पटकथा लेखक और शायर जावेद अख्तर की शरीके हयात हैं।

0: स्वप्निल एच डिगे की तर्ज थी, आप सुन रहे थे मनोज यादव का लिखा ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, फिल्म थी इश्क तेरा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
5: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
5: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का।

शफ़ाकत अमानत अली की आवाज़ें आप सुन रहे थे। फिल्म मुल्क में शकील आज़मी की रचना थी, अनुराग साकिया की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटी सी अंतराल के बाद।

0: देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं, अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए, तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म राजी में आपने सुना हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन की आवाजें, गुलजार के बोल थे शंकर एहसान लॉय की तरफ से श्रोता, और यही थी आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार

मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनो नको काला कपड़ा पहनो नको उजला कपड़ा पहनो नको मेरे दम से तू सुहागन सर से पांव तलक का सावन।

दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है।

1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लेज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों शबाना आजमी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत। इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी शबाना आजमी।

दोस्तों शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है, उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गौतम घोष की पार उन्होंने की थी। सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज।

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मॉर्निंग रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड,

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है।
2: आकाशवाणी भोपाल से लीजिए, सुनिए।

0: सतना जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सतना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। जिले में सेवा, सद्भाव, सामाजिक सहभागिता और सकारात्मक संकल्प की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ भव्य रूप से किया गया। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में आयोजित वृहद रक्तदान शिविर से की गई। रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए रक्तदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित कर सेवा और संकल्प के उजियारे का संदेश दिया गया। जिले के प्रमुख एवं आइकॉनिक स्थलों पर आकर्षक दीपमालाएं सजाई गईं। निर्धारित समय पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, सद्भाव, सहयोग और समाज के प्रति सकारात्मक दायित्व की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। वहीं अगर जिले के मौसम की बात करें तो बारिश से भूजल स्तर बढ़ गया है, तापमान में भी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अधिक बारिश हुई है। जिले में अब तक 1296 मिलीमीटर से अधिक औसत बारिश दर्ज की गई। जिले की औसत सामान्य बारिश 891 मिलीमीटर है। अधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति भी बन गई थी। सभी जल स्रोत लबालब भर गए, नदियों में बाढ़ आ गई। शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए गए। जिले में 16 सितंबर तक 7744 प्रभावित परिवारों के प्रकरणों में 3,74,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर वितरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 30 अगस्त को सतना जिले में भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ की आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का मुआयना किया। राहत शिविरों में पहुंचकर उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों से चर्चा की। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर बाढ़ की परिस्थितियों के दौरान हुई क्षति के बारे में जानकारी ली। प्रभावितों को प्रभारी मंत्री ने राहत सामग्री का वितरण और सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद उन्होंने चित्रकूट के भरत घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं साफ सफाई के कार्यों का जायजा लिया। सियाराम कुटीर में नेकी की दीवार का अवलोकन भी मंत्री ने किया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर की। सतना शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 से 45 तक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान बीते दिनों शुरू किया गया। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक UPHC एवं PHC में विशेष शिविर स्थल पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने अपने सतना प्रवास के दौरान बीते दिनों बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं शासकीय हाईस्कूल का निरीक्षण किया। सतना जिले में जल जनित एवं संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर सतीश कुमार एस ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत हैजा, दस्त, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य जल जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पेयजल की शुद्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा मच्छर और मक्खियों के नियंत्रण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सतना जिले में आधार सेवाओं को आम नागरिकों तक अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जिले में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आधार सेवा केंद्र का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अब बात करते हैं त्योहारों की। गणेश उत्सव का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से जिले भर में मनाया जा रहा है। घरों और बड़े सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, आरती और मोदक का भोग लगाया जा रहा है। कलेक्टर सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में बीते दिनों शांति समिति की बैठक में गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण भाईचारे की भावना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाने की अपील की गई है। वहीं अगर शासकीय अभियानों की बात करें तो मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत 11 सितंबर को उचेहरा जनपद पंचायत के सभागार में जनसंवाद, जनसुनवाई और उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 130 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयी और लंबित 2389 CM हेल्पलाइन की शिकायतों में से 1821 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस जनसुनवाई में सांसद गणेश सिंह, विधायक नागौद नागेंद्र सिंह और विभिन्न विभागों के जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में कलेक्टर और SP ने उचेहरा शासकीय सांदीपनी विद्यालय पहुंचकर कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इसके बाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचेहरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोगियों के उपचार संबंधी जानकारी ली। निर्माणाधीन सांदीपनी विद्यालय भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। सतना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था आज।
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है, जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोक नगर में लगता है, जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोक नगर एमपी में लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं? हाँ
1: जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे।

0: तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जाते हैं, तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन किया था।
0: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है। मैम ऐसे जब साथ में खाते हैं ना, तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा दिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परभनी से। सतीश तावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच कटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
2: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही है आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए, ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए।
2: बारिश तो नहीं गई गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी, बिल्कुल। और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेल्थ फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपकी साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंटर कश्मीर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
0: जी,
1: और
0: अच्छा।
1: बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहती है, जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी

0: जी आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट पेंट लगाते हैं, सिटी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में दो चार शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
1: इसके अलावा क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो दो चार बार हमने खेला है कि
0: बारिश हो रही है,
1: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है बहुत ज्यादा जमती है, और उसके पीछे लगाना बहुत आसान होते हैं, फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बचपन में क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं, बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, दो चार बार मैंने देखा है,
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले जाए ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, गाने के बोले पंची स्वर में गाते हैं, बावरी गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: फरमाइश ममता दीदी नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
0: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
1: भाईकन मुंडा?
0: जी मैम।
1: अच्छा, कौन सी जगह?
0: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सुनारी असम।
1: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए आप जहाँ से बोल रहे हैं।
0: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
1: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
0: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, फिर इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का।
1: जी जी,
0: उसमें मशीन में डाला जाता है।
1: हाँ।
0: फिर इसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
1: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं। और
0: जी जी मैम,
1: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
0: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू तो यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जाते उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
1: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
0: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
1: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
1: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना चोरी।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं वहाँ पर? क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है,
1: जी जी अच्छा
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है। और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा,
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो
0: जी
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि
0: जी
1: वहां से एक रास्ता खुल जाता है। तो
0: जी
1: जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक
0: जी
1: वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ से।
1: अच्छा, सतपुड़ा
0: हाँ
1: के घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे,
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं
1: तरह
0: है।
1: से
0: जी
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने की आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
0: बिल्कुल
1: बताना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
0: जी।
1: एक बात और कहनी थी कि ये जो
0: जी
1: जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए
0: हाँ
1: रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके। और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
0: बिल्कुल
1: दादा ने
0: बिल्कुल
1: जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
0: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे
1: जी
0: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
0: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल। और वहां के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
0: जी
1: और मिठास होती है उनमें। कौन
0: जी
1: कौन
0: जी
1: से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती ये जो मिठास की अब बात की है वो है और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी। तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप कौन बोल रही
1: हैं। मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ
0: जी, बताइए नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध भारती में।
0: जी, बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी जी जी जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से
0: जी,
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे।
1: जी, हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी,
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी,
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ?
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत

0: अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है, इसी तरह से शक्ति भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
1: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
0: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
1: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए।
0: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
1: क्या बात है,
0: फिल्म थ्री इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दशा सुमेर घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से।
0: हाँ।
1: आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कन्नू, मैंने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात

0: या समय से
1: हाँ।
0: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्योहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
1: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे
0: जी। बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी से, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
1: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ,
0: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है जैसे कि कचौड़ी गली में है
1: हाँ।
0: जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब से महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
1: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
0: जी जी जी
1: याद है तो सुनाइए जरा।
0: जी नहीं हम गा सकते,
1: नहीं गा सकते,
0: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि हाँ। गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है
1: हाँ।
0: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये हाँ। है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाबू जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मैसूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनम रे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का, जो भी सचमुच है कि कचौड़ी वैसा नहीं बन पाता,
1: नहीं मिल पाता वो स्वाद नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
0: हाँ।
1: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है, तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है, और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, किसी
0: हाँ।
1: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
0: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है
1: जी जी,
0: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
1: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। लोग हारमोनियम बजा के ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं ढंग गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात है।
1: जी, हमारे गुरुजी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उन लोग उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और तो ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो, हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी के

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, भाई जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता जी,
1: सा,
0: और बताना चाहूंगा मैं, उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण भंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग

फिल्म बाजार की ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी ये गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्ब देखने के लिए। तो अगर वो जर्ब कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग। बेगम अख्तर की आवाज में ये दादरा।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा। इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज़, गीत और संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 5

0: 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में और आपको याद दिला दें आज जानी मानी अदाकारा शबाना आजमी का जन्मदिन है तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं सुनिए अगला गीत

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर, दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की।

एक लम्हे के जितनी, हां कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्ब देखने के लिए। तो अगर वो जर्ब कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटिकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना, संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता है, चल ही चुका है कि ये इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत लिखते हैं, उसमें से आपको शब्द और गाने ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए हम इबारत आपको पढ़ के सुना देते हैं आज की, जिन्होंने पढ़ी नहीं है इबारत। उसने डायरी के एक पन्ने पर कोई अफसाना लिखा था, खामोश अफसाना। मेरी निगाहें यानी नजरों ने चुपके से उसे पढ़ लिया था, लेकिन न बोला कुछ। उसकी खामोश आंखें कुछ कह रही थीं। उसकी आंखों में जाने कितने सवाल थे और शायद किसी जवाब का इंतजार भी। मैंने कहा, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। उसने नजरें फेर ली और मुस्कुराकर डायरी को छुपाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों ने कहा, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगी। हम दोनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस आंखें थी, इंतजार था और अधूरा अफसाना। फिर हम बिछड़ गए, लेकिन बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है। एक अजीब शाम जब वो मिला तो जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब जरा बताइए दोस्तों, किस मोड़ पर मिला वो, मिला या नहीं मिला, ये आपको पूछना है। आप सभी से ये सवाल है, आंखों से कैसे हुई बातें, दीजिए इन सवालों के जवाब। बोलती हैं आंखें जब हम नहीं बोलते। और आज ये भी बताइए कि डायरी के पन्ने पर आपने क्या कुछ लिखा, और आंखों से कब आप बोलते रहे, किससे आपने आंखों से गुफ्तगू की, और आंखों की भाषा कब आपने समझी। कई बार प्रेम के ऐसे लम्हे आते हैं जब आंखों की भाषा समझ में आती है। कई बार ऐसा लम्हा भी आता है जब माँ आंखों से कुछ कहती हैं और आप डर जाते हैं और उनकी बात आप मान लेते हैं। तो आंखों वाली भाषा कब आपने बूझी, कब आपने बुझाई, और साथ में डायरी के पन्ने पर क्या कुछ लिखा है, जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। अब जरा सुनिए गाना और बताइए इसमें कौन है कलाकार।

आपको बताना है फिल्म का नाम। संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए। गाना तो आपने बूझ लिया होगा कौन सा गाना है।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली, किससे कही और आपने कब समझी आंखों की भाषा, किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है। बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा के थरथराहट से, मोबाइल के हल्के कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए, तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं, पर अपने पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक पे नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुझबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं, शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने, खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना, बिछड़ने की छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद, मेरा नाम लिखा है। धन्यवाद। तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए, और जो गाने हैं, शब्द हैं, शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब जरा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज। मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नजर आया था, लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं। डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहां, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं। और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया और कागज था मन मेरा, मेरे महबूब वगैरह वगैरह गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था आपकी नजरों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जरा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी जिंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नजरें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम चुप रहकर जवाब देने की और आंखों की भाषा की नजरों की बात, तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज में है ये गाना।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज़ थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गजब के बोल थे, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आँखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा ये भी, आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोटपैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोटपैड भी, मोबाइल का नोटपैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में हैं, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में हैं। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहाँ ध्यातव्य

1964 की फिल्म है शबनम का गीत तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए। आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना हम सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें। अगली फिल्म का नाम।

शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधीर श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग है, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनकी उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहाँ जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनों वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं बस ख्वाबों में, पर क्या उसे मिलना कहेंगे।

कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है, ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूँ, चुप चुप खड़े हो, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी। अब बस बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसा लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसा लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम।

घर फिल्म का गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन, बिल्कुल सही जवाब आया है। और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आंखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आंखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्प्रेरी बेसिस पर आई थी। भला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चप्पल हिरणी सी थी और वो आंखें बोलती आंखें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे। एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन की परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहती हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती। यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताज़ा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है ये रात फिर ना आएगी, आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको बूझना है। हीरो हीरोइन का नाम

रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने भावनाओं को कागज पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़े और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बुझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले

0: ये इशारे ये अदाएं।
1: पेंगेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर।

कल हो ना हो इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और शान ने इसे गाया है गीतकार जावेद अख्तर संगीतकार शंकर एहसान लॉय

0: अलका याग्निक और शान के गाय फिल्म कल हो ना हो के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर के गीता भवन परिसर में आयोजित जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर शहीद बलिदानों को याद किया।
1: आज हमारे गोंडवाना के वो अमर शहीदों ने जो करके दिखाया, उसके आधार पर आज नहीं तो कल 90 साल बाद देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने वाले देश में एक भी अंग्रेज नहीं बचा, ये हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह के उस बलिदान का परिणाम।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से नमो प्रेरणा कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय शाह और राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी भारत की जनता की सेवा में अपना समर्पण भाव बनाए हुए हैं। श्री मोदी ने रहमान के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संदेश बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी साझा किया गया है। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत ने आज गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा शनिवार तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 1,700 युवा शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने कहा कि धर्म केवल बुढ़ापे की चीज नहीं है, बल्कि जीवन की शुरुआत से अंत तक उसका महत्व बना रहता है। कार्यक्रम में आज धर्म, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल समापन सत्र में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। वे करीब 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में रहे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे यशोभूमि में मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण करेंगे और स्वदेश तथा जापानी प्रतिनिधि मंडलों के साथ सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इस आयोजन में स्टेट पार्टनर के रूप में भाग ले रहा है। राज्य पवेलियन में प्रदेश की सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, निवेश के अवसर, औद्योगिक क्षमताओं और प्रतिभा आधार को प्रदर्शित किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर तक यशोभूमि नई दिल्ली में हो रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 37 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। आगामी बारिश होने से इन जिलों में बारिश के आंकड़ों में सुधार की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्रीचरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर जापान को शुक्रवार को 8 विकेट से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नर्मदापुरम में कल सिधानी घाट पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आगर मालवा में कल आयोजित हुए रोजगार मेले में 83 शिक्षित बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया गया। भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत शिवपुरी डाक संभाग में आगामी 25 सितंबर को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के आजीविका भवन में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर

0: श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया के करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
4: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीन स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
6: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
5: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
7: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
8: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
5: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी

रुझान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में. लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नेगर ने.
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई.
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर.
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग.
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी.
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए. 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया.
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमसाया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शिवन रिज़वी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा।
1: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोलते कनु रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली, कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना, जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है, या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया,
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली पहली सखी जिनका कॉल लगा है।
1: हो रही हूं।
0: तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसी घर पर रहती हूँ, कुछ शेरो शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेरो शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओह ओह, क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है खूबसूरत।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है। और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सब।
1: हाँ
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी से मोदक का भोग लगाया।
0: अरे
1: हेलो
0: वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में आप? और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: ये हम प्रार्थना करते
1: धन्यवाद।
0: हैं। और
1: हाँ
0: बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा और देवा, गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: गाना
0: प्यारा सा गीत है ये।
1: सुन।
0: तो बहुत अच्छा सा
1: हाँ
0: ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं अभी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोहर है और मैं भूली गांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए आप क्या करती हैं कल्पना।
1: जी, मैं आंगनवाड़ी मदद में हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में वो कौन सा है।
1: जी, वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती हैं ना।
1: हाँ सब
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको,
1: जी, मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी बच
1: ड्राइंग
0: हाँ
1: करना।
0: अच्छा आप आंगनवाड़ी में काम करती तो वहां पर बच्चों को पढ़ाती हैं।
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ,
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए।
1: तारों का चमकता चेहरा हो,
0: तो
1: फूलों
0: ये
1: की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं, सलवार
1: जी मैम मैं लेडीज, हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के है ना, और
1: जी
0: सलवार
1: मैम
0: सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो
1: जी
0: वगैरह
1: मैम
0: काफी चल रहे हैं ना,
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर कि सबसे ज्यादा कौन सी
1: मैम इस समय तो सब लोग पैंट ही सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपके बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
1: हाँ
0: सूट सिलवा
1: बहुत अच्छी
0: सकते
1: सी
0: हैं।
1: ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडीज आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम फरजाना सखी से बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ही है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है। हाँ
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकते हैं ना।
1: अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है। हाँ
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई अब, है ना?
1: हाँ बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से। चंदन
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं।
1: का नाम, उनका नाम भी फिर हो जाए।
0: अच्छा।

0: बेटी सायरा और सबाना।
1: हाँ बहुत अच्छा,
0: और बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सबीर।
1: अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे भी सुनना है।
0: क्योंकि मेरी बेटी है ना बिजली वाली, उनको बहुत पसंद है।
1: अच्छा, अरे
0: वो
1: वाह,
0: मोबाइल में रखेगी ना वही गाना रखेगी, उनके पापा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
1: है, अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ।

0: आपका। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए। नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना, सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे सोनू निवाल फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ, अरे मैम नमस्कार, मैं संभाजी नगर से बात कर रही हूँ, निर्मला कर रहा है।
0: अच्छा, आप छत्रपति संभाजी नगर से बोल रही
1: संभाजी
0: हैं निर्मला जी?
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे।
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे
0: तो
1: एक्चुअली।
0: जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब पसंद है ना आपको? तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाँ, गणपति का कौन सा गाना सुनाने वाली?
0: तो ठीक है, हम ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्लारे बोल रही हूँ,
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा
1: हाँ
0: है? तो बताइए, आप पढ़ती हैं
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स्थ में। अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ,
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है,
0: सके सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना।
1: हाँ
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना,
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा सांची को।
2: लकड़ी

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है। जी
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: हाँ,
1: दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ,
0: अच्छा, तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। 23 सालों से
0: वो
1: रिश्ता है मेरा विविध भारती से। जी
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल, अच्छे से उनको पढ़ाना
1: घर
0: लिखाना,
1: संभालना।
0: घर संभालना, सच में।
1: जी
0: और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते
1: बहुत ही,
0: हैं, लोगों को
1: हाँ,
0: लगता है
1: और
0: वही चीज बड़ी है।
1: ये काम नजर भी नहीं आता है।
0: जबकि
1: अगर
0: ये
1: ऐसे
0: सबसे
1: जैसे
0: जरूरी काम है।
1: कि हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता है नहीं ऑफिस है। घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि
1: जी
0: अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही
1: बहुत
0: बच्चों को भी
1: ज्यादा मैम।
0: संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है ये।
1: हाँ
0: आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा, 23 सालों से वही मैं बोल रही हूँ, 23 सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे। सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, क्या
0: अरे
1: फिट आ
0: वाह।
1: रहा है, मैं जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ
1: भाग दौड़ में
0: नहीं,
1: लगा
0: बच्चे
1: देते
0: छोटे हैं,
1: हैं।
0: आपने बताया 5 साल के 2 साल के, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि विविध भारती पे आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है। इतने सालों से, मेरे
0: हाँ,
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक बार
0: हैं।
1: विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो ही, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन
1: टाइम है।
0: नहीं, सच में, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है, इस मोड़ से जाते हैं,
0: हाय
1: कुछ उस
0: हाय,
1: पे
0: क्या
1: कदम
0: बात है,
1: रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन
1: ना कश्मीर, हमसे मिल
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: जाइए।
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते हैं
1: आइए और सिर्फ देख रहे, कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत, जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है। दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
1: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत सैयतमन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
2: कौन हो भाई? यहाँ तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
1: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
2: ओमी? कौन ओमी?
1: दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी।
2: चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया।
1: वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था।
2: मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना?
1: ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई।
2: हाँ, बाथरूम भी यही है।
1: हाँ, यही तो है बाथरूम।
2: यानी घर तो मेरा ही है।
1: बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा।

झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

0: आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा। अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी, सुन रहे हो ना? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूं। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी या कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा। जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजा याफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव। सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं, और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।
1: एक

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी मैं, मेरा नाम मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था, उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी। हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूं और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूं, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती। और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपने सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहां होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहां है, क्या पता कब से उससे बात नहीं हुई। हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिख कर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थी। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर

0: वजन है
1: This
0: और
1: meeting is
0: कुछ
1: being transcribed and summarized.
0: कराई थी तो मैं 80 किलो था, इतना वजन मेरा घट गया, बताओ 36 किलो वजन है मेरा। और किस बेटे का

0: बेटे का और कृष्णा का तबीयत तो भी है, हर साल में ठीक है, पहले कृष्णा की ही तबीयत
1: टीकारू करेगी की सब्जी।
0: कृष्णा की तबीयत
1: जोर है, मेरे कमर हमेशा दर्द रहती है, हमेशा दर्द करती रहती है, हमेशा
0: सब जोर हो गई है। अभी है
2: और गले में
3: पीपीटी आया है, पीपीटी।
4: वाह वाह वाह वाह,
5: कौन सा स्टेशन है भाई?
3: वीडियो भी तो डाल लो
6: यार।
7: गुड मॉर्निंग अंकल।
3: भाई ये रिकॉर्डेड

सब कहते भोले नाथ।

0: नमस्कार फ्रेंड्स। अभी जो क्लास है आपकी, टुडे
1: सर
0: क्लास,
1: नमस्ते।
0: लास्ट क्लास जो होगी अभी, वो है ये डिजिटल मॉड्यूलेशन। स्पेशली केवल रिवाइज ही करना है, बाकी तो सब लोग जानते ही है। डिजिटल मॉड्यूलेशन आजकल सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन सभी जगह, बट थोड़ा रिवीजन हो जाए। टाइम तो बहुत कम है, बट रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, इसी के मैंने बनाया
1: सर
0: है क्लास।
1: इस हफ्ते की सर एक क्लास हमारी जो है लॉगरिथमिक और आरएफ वाली जो रह गई थी सर, वो कब शेड्यूल करिए सर? बस एक वही रह गई है।
0: लॉगरिथमिक की क्लास तो हाँ, गुप्ता सर लेंगे लॉगरिथमिक की क्लास। बाकी लॉगरिथमिक में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ऐसे ही बता देंगे आप कभी भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और वैसे गुप्ता सर लेंगे उसको क्लास को,
1: वो मंडे में
0: नेक्स्ट वीक।
1: होगी, मंडे में वो आज की
0: हाँ
1: क्लास
0: शायद
1: रिप्लेस
0: मंडे
1: हुई
0: में,
1: है मंडे
0: हाँ
1: में।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मैसेज और था कि जो फीडबैक फॉर्म जो है सभी को भरना है, तो जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज वो भी अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि सभी लोग के लिए वो, पहले केवल वो SC ST कैटेगरी वालों के लिए ही था, अभी सबके लिए है, सभी
1: बाईपीसी में उसमें
0: लोग भर
1: कैटेगरी जरूर भर दें, कैटेगरी
0: दें।
1: जरूर भर दें, एससी का
0: हाँ
1: नंबर क्या दें
0: कैटेगरी
1: सर?
0: जरूर भर,
1: कैटेगरी जरूर भर दें
0: हाँ जो उसमें कैटेगरी के कॉलम होगा ना वहां पे कैटेगरी जरूर भरें।
1: सर, एससी का नंबर क्या दें उसमें?
2: कैटेगरी में तो नंबर ना मांगा हुआ है,
1: सर वेयर इज द फॉर्म
2: फिर
1: अवेलेबल?
3: उसमें कैटेगरी जगह कोड मांग रहा है।
1: और मेल का सर,
0: अच्छा
1: उधर का
0: रिवाइज
1: कैटेगरी
0: कर दिया गया है, देखो रिवाइज कर दिया गया है भाई, उसमें फॉर्म को
2: याद
0: रिवाइज
2: नहीं
0: कर
2: किया
0: दिया, अब नंबर की जरूरत नहीं है, केवल
3: इसमें इसमें देखना है।
1: मेंशन
3: वही है
0: कर,
1: सर, हमको तो वही दिख रहा है, हम देखना है सर।
0: रिवाइज कर दिया गया, ठीक है ना। तो
3: रिवाइज हो
0: चलिए,
3: चुका है, फिर
0: तो
3: से लिंक पे चले जाओ, रिवाइज हो चुका है।
0: क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कम ही बचा हुआ है अपना, है ना। टाइम बचेगा थोड़ा डिस्कस भी हो जाता है।
3: पूछो क्या है? पहले स्टार्ट कर लीजिए प्लीज।
0: टुडे टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। सो इन अर्लियर क्लास वी स्टडीड द टेक्निक्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन, नॉट टुडे एंड आई थिंक यस्टरडे वी रीड द एनालॉग मॉड्यूलेशन क्लास, एंड नाउ वी स्टडी द डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? वन डेफिनेशन इज एडिंग इंफॉर्मेशन टू ए कैरियर सिग्नल, और सेकेंड टाइप से दिस मे बी रीड एज द चेंज इन द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर, साइन वेव कैरियर कैन बी
3: जी
0: चेंज्ड, इट मे बी एम्पलीट्यूड, इट मे बी फेज, इट मे बी फ्रीक्वेंसी, है ना। सो देयर इज ए मॉड्यूलेशन, कन्वर्टिंग डिजिटल और एनालॉग इंफॉर्मेशन टू ए वेव फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए गिवन मीडियम, मॉड्यूलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। सो when we change the amplitude, frequency or phase continuously in continuous manner, that means that is the analog modulation. And if the information is digital, changing parameters digitally, when we change the digitally discretely the amplitude or frequency or phase, then we use the word keying. So, amplitude shifting in place of amplitude modulation, phase shift keying in place of phase modulation, frequency shift keying in place of phase modulation. We change these three parameters in discrete manner. Modulation system और मॉड्यूलेशन रिक्वायरमेंट इन द चेन वेयर वी प्लेस द मॉड्यूलेटर. वी सी द फर्स्ट वी यूज द सोर्स. सोर्स मीन्स अवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग और डिजिटल. ठीक है ना. सोर्स एनकोडर देन चैनल एनकोडर देन मॉड्यूलेटर एंड आफ्टर मॉड्यूलेटर ट्रांसमिट द सिग्नल सो थ्रू चैनल और थ्रू अ वायर इट कम्स इन द रिसीव्ड एट रिसीवर साइड एंड डिमॉड्यूलेटेड देन चैनल डिकोडर देन सोर्स डिकोडर एंड फाइनली वी गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. एक कंप्लीट सिस्टम. दिस इज द एक्चुअली रफ व्यू और ए सिंप्लीफाइड व्यू बट इन द कंप्लीट सिस्टम एज एन इंजीनियर हमें जो पता होना चाहिए वो इस टाइप से ब्लॉक डायग्राम रहता है. जैसे इंफॉर्मेशन को पहले फॉर्मेट किया, मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल इनपुट हो गया.
4: इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो.
5: जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा. वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं. शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख. जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे सारा रहस्य खुलता जा रहा था. जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था. जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था. अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी. जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूंछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था. उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी. ओमी ओमी ओमी ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी. ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ. हाथापाई जानलेवा हमला जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई. उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया. ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया. उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था. जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी. जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा. यही उसकी दुनिया थी. मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया. वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा. उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए. उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया. उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई. जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था. कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था. चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी. हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं उसमें, न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना।

0: कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओमकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब? पता नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: कभी

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आंखों में पलने वाले पहले सपने अक्सर बहुत मासूम होते हैं। उनमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां शामिल होती हैं। कभी कुछ बनने का सपना, कभी दूर कहीं घूम आने की चाह। समय के साथ सपनों का आकार बदलता है, लेकिन उनकी चमक मन में बनी रहती है। कुछ सपने पूरे होकर जीवन को खूबसूरत बना देते हैं, तो कुछ अधूरे रहकर भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

न जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम ये है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

अगर जीवन एक बगिया है तो हमारे रिश्ते उसमें खिलते अलग अलग फूल। कुछ फूल खुशियों की खुशबू देते हैं तो कुछ अनुभवों के रंग भरते हैं। कभी मौसम सुहाना होता है तो कभी आंधियां भी आती हैं, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें की जाए।

में दो लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है? चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
2: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमेश जी, सादर नमस्कार।

संगीतकार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों ठो वीर सावरकर सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव किंगटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामी रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें तो शायद हमारी धरती कोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम

0: सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: अरे महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं

0: जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
1: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थी। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: पानी ले आ रहे?
1: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
3: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
1: ना कमाता है ना धमाता है, ऊपर से रोट जमा तक
3: दीदी।
1: अरे इनको तो
3: दीदी।
4: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
3: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
4: अरे
3: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
4: हाँ हाँ,
3: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
4: अब फिर क्या?
3: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
4: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
5: जी दीदी।
4: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
5: बिल्कुल चलेंगे।
4: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
5: जी दीदी।
6: जी दीदी,
5: हम सब तैयार हैं।
0: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
1: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
1: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
0: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
1: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थी।
0: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन-सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे, लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी।
2: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़े चुप चुप से लग रही हो।

0: कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
1: बिल्कुल।
0: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
1: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
0: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: हाँ।
0: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: आपको नहीं लगता?
1: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

0: ज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़े
4: इज्जत और बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती
2: हूँ। दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
2: अरे अपनी बहुत सही है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही है, अब हम सशक्त बन रही है।
4: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थी, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इंट्रो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाए और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़े। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
2: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: आकाशवाणी at 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में हुए शामिल। मुख्यमंत्री कल भोपाल में 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे और कुनू में मादा चीता के GP12 ने 4 शावकों को जन्म दिया। चीतों की संख्या बढ़कर 54 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ 17 देशों के न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में नए नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कहा है कि मध्य प्रदेश में सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने सेमिकॉन इंडिया में दुनिया भर से आए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी क्षेत्र के कई निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई थी।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया है। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्य प्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर इस अभियान की एक प्रमुख मिसाल बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान हासिल किया है और इंदौर को 7-स्टार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग भी मिली है। इसके साथ ही पुराने कचरे के निपटान के बाद प्रदेश ने 0 लैंडफिल की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कैंसर और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नमो प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दक्षिण क्षेत्र कृषि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों की आय और जीवन में सुधार, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि के जरिए रोजगार बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है। आज हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री जी का काफी जोर है रिफॉर्म, वो चीजें कौन सी है, वो नियम कानून कौन से, क्योंकि नियम जनता के लिए, जनता नियम के लिए नहीं। अगर कोई पुराने एक्ट है, पुरानी प्रक्रियाएं हैं, उनको बदलने की जरूरत है। भारत सरकार जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट क्या आप बदल, और भारत सरकार में आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप हमें खुल के बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखना चाहिए, और इसलिए जहां नियमों में बदलाव की जरूरत है आप सजेस्ट की, भारत सरकार भी करेगी, और जो राज्य सरकारों को करना है वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार करे ताकि हम जनता को ज्यादा राहत देने का काम कर सकें।
0: श्री चौहान ने कहा कि खेती के 3 प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में नारियल का निर्यात 4,349 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,038 करोड़ रुपए हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में स्वच्छता के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे को स्रोत पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे की 4 श्रेणियों में अलग अलग करना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कचरा संग्रहण, पृथककरण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। वे प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार 413 नगरीय निकायों में से 352 में करीब 584

0: 3.81 MLD सीवेज उत्पन्न होता है। एनजीटी ने पुराने कचरे के निपटान और सीवेज प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भोपाल में प्रदेश के 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित होगा। योजना के तहत कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 70% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। श्योपुर स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान से खुशखबरी है। भारत में जन्मी मादा चीता की जीपी 12 ने आज 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कोनो में चीतों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जिसमें 37 भारत में जन्मे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे चीता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी 4 नए शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए कोनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी टीम को बधाई दी है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के पदनावर में जिला स्तरीय जन संवाद और उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में आज महिला और बाल विकास विभाग ने सुंदर गार्डन में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कौशल प्रदर्शनी लगाई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत खंडवा के हरसूद विकास खंड के ग्राम धारूखेड़ी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गयी और विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिले के भ्रमण के दौरान स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंचायत योजना की प्रक्रिया का जायजा लिया। शहडोल जिले में मानव हाथी संघर्ष के बीच उत्तर वन मंडल ने एक बड़ी पहल की है। हाल ही में DFO ने कलेक्टर को पत्र लिखकर हाथी प्रभावित गांवों के 1717 कच्चे मकानों को पक्का कराने का प्रस्ताव दिया है। छिंदवाड़ा में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में सेवा मेरा योगदान थीम पर जिला स्तरीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षकार और कलेक्टर ने खेड़ी गांव में कृषक विमल भाबोर के खेत का निरीक्षण किया। जनविश्वास अभियान के तहत आज आगरमालवा जिले के बड़ौद मंडी में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 64 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित अधिकारियों ने निराकरण कर मंच से अवगत कराया। कटनी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVM और VVPAT के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण 22 सितम्बर को शाम 5 बजे किया जाएगा। दतिया में सेवा से संकल्प और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम पंचायत थरेठ में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इंदौर में संगीत मूर्धन्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में शास्त्रीय संगीत सभा कल शाम 6 बजे संतोष सभागृह में आयोजित होगी। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है,

और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: संदेशों को सुनने के बाद अब आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा के लिए।

18 सितंबर को दिन और आज को दिन मनाओ जाते, आप और सोच भी नहीं सको कि आज के दिन मनाओ जाते विश्व बांस दिवस के रूप में। बांस जो अपने गांव में खेड़े में जगह जगह पे उन्होंने लगा कर रखा थे और बहुत उपयोगी रहे थे, बाकी महत्व दुनिया भर में विश्व स्तर पे पहचानों का बाकी महत्व, और उनके लाने हर साल 18

सीमित उपयोग हैं, बहुत कम उपयोग हैं, तो अपन और जैसे सोच सकते हैं कि बांस के उनसे भी ज्यादा उपयोग हो सकते हैं, जितने अपन मालूम है बांस से भी ज्यादा अपन बांस की और उपयोग कर सकते हैं। तो जा एक बहुत जरूरी बात है और जा के बारे में अपन कछु कछु और बात कर रहे हैं। जैसे एक जरूरी बात तो यही आ गई कि चीन के बाद भारत बांस को दूसरों सबसे बड़ा उत्पादक देश, मतलब चीन में सबसे ज्यादा बांस पैदा होते हैं, बाकी बाद में अपने थे 130 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाते हैं। और जब बात अपन जानते हैं बांस खूं गरीब आदमी की लकड़ियां और हरो सोनों का औजार थे, तो अपन जो बांस के बारे में कछु और बातें कर रहे हैं, जब अपने हाथ में जो चिट्ठी आ गई है, जल लिखी है अपनी नियमित श्रोता है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, मिलेंद्र नेताम, देवेश रंजनी, अंबिका और कुमारी योगिता ने। और जय एक चिट्ठी है मोरटक्का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल की। और जय एक चिट्ठी है सरस्वती शारदा रेडियो श्रोता संघ चारमीनार चौक गंडरी पंडरिया से दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, सोमेश मनीषा और सोहम की। तो जिस सब भैया बहनों ने जो गाना सुनना चाहो है वो गाना है लता मंगेशकर का और फिल्म है अनपढ़। तो सुनाते अपन जो गाना।

तो भैया बहनों देखो, बांस के बारे में हम बात कर रहे थे और बांस का है कि पर्यावरण को सबसे बड़ा रक्षक होते हैं। जाके जो लाभ हैं उनके लाभों के बारे में अपन जब सोचना शुरू करें तो बांस से अपने दूसरे सामान्य पेड़ों की तुलना में लगभग 35% ज़्यादा ऑक्सीजन मिला थे, कार्बन को अवशोषण करा थे जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मददगार है। बांस को 1 हेक्टेयर क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सका थे।

0: जाके संगे संगे बांस की जाने पर देखी ना बहुत फैली भरी रहे थे जमीन के मट्टी ये पकड़ के रखा थे, तो बांस को जमीन नेटवर्क जैसे बहुत घनो रहे थे तो जो मिट्टी है जकड़ के रखा थे जैसे बाढ़ और भारी बारिश में भी उपजाऊ मट्टी बह नहीं पाए और बंधी रह जाते। और एक सबसे बड़ा फायदा बांस को जो और है कि बांस कम पानी और बिना कोई खास केमिकल या कीटनाशकों के बंजर या खराब जमीन जो है बांस से अच्छी तेजी से उग सका थे और जाके कारण जो उनका खराब भूमि है वह भूमि से फिर से उपजाऊ होने लगा थे। तो जाके अपन कुछ और बातें भी करें मनोज जी, देखो जब चिट्ठी अपने श्रोता बिल्कुल नियमित रूप से लगाते रहते हैं चिट्ठियां और आपकी श्रोताएं चिट्ठियां मिलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगा थे। जब चिट्ठी अपने नियमित श्रोता है सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, योगेश्वर सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती की, और आवास कॉलोनी बायां तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारती, कोशाबाई भारती, कुमारी लक्ष्मी, महेंद्र सिंह, सचिन और तरु भारती की। तो इन सब की पसंद पे अपन सुनाते हैं फिल्म गंगा जमुना में जो गाना जेफू गा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथी।
1: गुजरिया

लगे है तो कर जवामा खटक होई बेकरी फांस लगे है तो कर जवामा खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवामा खटक होई बेकरी थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन ढाक दिनक दिन ताक तिनक तिन ढा आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

तो भैया बहनों, अपन बांस की बात कर रहे थे। बांस को भारत में बड़ो भारी बाजार है, जो हरे सोने के रूप में विकसित करो जा रहा है। और जाहे जाको मतलब अनुमान लगा हुआ है कि करीब 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा को जो बाजार है, जैसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं भारतीय बांस और उनसे जुड़े हुए उद्योगों को जो मूल्य है वो 28,000 करोड़ से ज्यादा को बाजार है। वो जो उद्योग सीधे तौर पर गाँव के लोगों को और आदिवासी क्षेत्रों के करीब 20 लाख कारीगरों और किसानों को आजीविका प्रदान कर सका थे। और जो टिकाऊ विकास जो होते भाई बढ़ावा देवे के लाने सिंगल यूज प्लास्टिक की जो चीजें होती उन्हें बांस के ब्रश, बोतलों, बर्तन और पैकेजिंग सामग्री से बदलो जा रहा है। मतलब जो आजकल प्लास्टिक को ज्यादा उपयोग होने लगा था ना, बाकी जगह पे बांस को उपयोग करके करो जा रहा है, तो बाद में बांस की खपत अच्छी हो रही है। और अब केवल टुकाइयां, चटाई है ये भर नहीं हुआ, बल्कि बांस के तो आजकल कपड़ा तक बनने लगे हैं। लग्जरी फर्नीचर निर्माण कार्य, जैसे अबे एक खबर मिली थी कि भारत को पहलो बांस मेट्रो रेलवे स्टेशन भी बन रहा है। तो ये सब चीजों में स्टील और कंक्रीट की जगह पे बांस को उपयोग करके करो जा रहा है। तो भारत सरकार ने बांस की खेती और व्यापार को सरल बनाने के लाने राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत करी है। एक संगे संगे भारतीय वन अधिनियम में संशोधित करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाए वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा के घास कर दोगे है। इसे अब का है कि घास की श्रेणी में कर दोगे तो अब किसान बिना परमिट के बांस की कटाई कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं बताओ, जैसे कि अपने मालूम चल जाए कि बांस के लाने सरकारी तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कुछ और के बारे में अपन बात करें, मानो जय चिट्ठी आ गई अपने पास में, बनिया पारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और समस्त माखीजा परिवार की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन और सुनाते हैं जो गीत, देखो गाँव है मुकेश ने और फिल्म है सरस्वती चंद्र।

तो भैया बहनों देखो, जब अपन ने गीत भी सुन लो, बांस की अपन बात कर रहे थे, बांस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं कि हमने आपने पहले बताई थी कि राष्ट्रीय बांस मिशन सरकार ने शुरू करो है, भारत सरकार की यह सबसे मुख्य योजना है जो खेत से उद्योग तक की पूरी मूल्य श्रृंखला कवर करा थे। जहाँ मैं सबसे पहली बात तो जा रहा, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, वे बांस की खेती में 60% तक की सब्सिडी सरकार से मिला थे। जो सामान्य किसान हैं उन्हें कुल लागत को करीब करीब 50% तक की सब्सिडी दी जा थे। प्रति पौधा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो दी जा थे, मामा कहा कि 240 से 250 रुपये को प्रति पौधा या टिश्यू कल्चर बांस की कमर्शियल फार्मिंग कराने दिए जाते हैं और 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जाते हैं। जहाँ सब्सिडी 3 सालों में दी जाते हैं ताकि पौधे को रखरखाव ठीक ठाक तरीके से करो जा सके। मां से काटवे छीलवे और चढ़ाई बनावे की मशीनों की स्थापना करवे पर 50% तक की सब्सिडी मिला थे। बांस के अन्य उत्पाद बनाए वाली जो बड़ी फैक्ट्रियां या उद्योग के लाने 25-30% तक की कैपिटल सब्सिडी को प्रावधान है। और कहवे को मतलब जो है कि इन सारी योजनाओं के साथ साथ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये कहते हैं PMEGP, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के उत्पादन बनाने को उद्योग लगावे पे 25-35% तक की सब्सिडी और शहरी क्षेत्रों में 15-25% तक की सब्सिडी के साथ में 50,00,000 तक को योजना के अंतर्गत लोन मिल सका थे। तो ये तो कहे मतलब जो है कि ये सब अपने लाने सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर रखी हैं, फायदे की बातें हैं, तो उन्होंने उनको फायदा भी उठाना चाहिए। और जैसे एक चीज और भी है कि तकनीकी अपग्रेडेशन और क्लस्टर विकास के लाने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग प्रकार से अनुदान दे जाते हैं। तो अपन और का करने हैं कि जो राज्य बांस मिशन है उनसे अपने संपर्क करने हैं, बागवानी विभाग से संपर्क करने हैं, तो उन पे जाके अपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने हैं, बाकी संगे अपने अपने पूरे को पूरा प्रोजेक्ट बताने हैं कि हम का काम करने वाले हैं, और बाकी संगे संगे फिर अपने उत्तर से पूरी सभी प्रकार की सहायता मिला थे। तो जय अच्छी सी जानकारी है थी जहां ने आप लोगों के संगे माटी। अब जो अच्छी सी जानकारी बाद में अच्छे से गाना किसी बना थे, तो जो अच्छे से गाना खिलाने अपन औरों को चिट्ठी लिखी है ग्राम जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से विनोद कुशवाहा नारायण सिंह मनकोबाई निशा प्रियंका बंटी कपिल ब्रजभान करण और छोटू कुशवाहा ने, और क्लासिक रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार मेहरा नंदकिशोर विनोद अर्जुन दुर्गाशंकर सिकंदर राहुल चंदू देवराज और सब ग्रामवासी ग्राम बकानी खुर्द पोस्ट आवली कला बाया भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान से। बड़ी दूर से चिट्ठी आई है मतलब जी। तो इन सब की चिट्ठियों पे अपन और सुनाते हैं फिल्म चितचोर में यशुदास और हेमलता को गावभाव जो गीत

भैया भी नरो अपन बांस की बात करी, अब एक और जरूरी जानकारी के जानकारी दे रहे हैं आप औरों को। डिजिटल कृषि मिशन जब भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जहाँ सितंबर 2024 में शुरू करोगा तो जा योजना को उद्देश्य आधुनिक तकनीकों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी जो ढांचो है बाकी जरिए कृषि क्षेत्रों को पारदर्शी और लाभदायक बनावो। जाको मुख्य उद्देश्य जो है कि किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनावो, उन्हें पहचान देवो, सरकारी योजनाओं सब्सिडी और ऋण वितरण में पारदर्शिता लावो, किसानों को बार बार कागज दिखावे और दफ्तरों के चक्कर काटवे से राहत देवो, ये जरूरी जाके मुख्य उद्देश्य है। जाको मतलब जो है कि आजकल अपन जानते ही है कि सब सारों को सारो काम पूरों को पूरा काम डिजिटल तरीका से हो रहा थे, अपने सबरे कागजात सबरी जो चीजें हैं मिला के ले जाने की जरूरत नहीं हुई, तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी किसानों को सुधाई जाते जामे एक बहुत अच्छा काम जो करो जाते एक फार्मर आईडी कहलाते है, जो कहलाते है किसानों की एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड ये के पहचान पत्र टाइप को, तो वो यूनिक डिजिटल पहचान बनाई जा रही है किसानों की, जामे कहा है किसान की जमीन बोई गई फसल पशुधन और सरकारी लाभों को पूरा रिकॉर्ड जामे डिजिटल रूप में जोड़ो रहे, तो जैसे जो फायदा हुआ कि जैसे ये कहीं पे भी कोई भी जरूरत है तो तुरंत पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह देखो जा सका थे और बाकी अनुसार जो भी कछु किसान कल्याण करवे की है सुबह सहायता सुविधाएं करी जा सका थे।

दही के संधि संधि जाना कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली सुई जाके जरिए मौसम मिट्टी की सेहत कीट प्रबंधन सिंचाई से जुड़ी सटीक और रियल टाइम जानकारी सुई किसानों तक पहुंचाई जाते हैं। और जहाँ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के भी है व्यवस्था, जहाँ वैज्ञानिक तरीकों से जो अनुमान लगाए जाते कि कौन से क्षेत्र में कितनी फसल पैदा हुई है, ये को फसल बीमा और MSP खरीदी में मदद मिल सका थे। तो जैसे जिस तरह से फायदा किसानों को जो हुए थे कि उन्हें तुरंत लाभ मिल सका थे, किसान अपनी फार्मर ID बता के कछु मिनटों में ही बिना कोई कागजी कार्रवाई के आसानी से फसल ऋण ले सका थे और सरकारी योजनाओं का पैसा और सहायता सीधे किसानों के जो सत्यापित खाते हैं उनमें पहुंच जाते। तो जो अपने फार्मर ID जल्दी जल्दी बनवा लेना चाहिए जिनकी ना बनी हो, और जाको पनौरों को फायदा से उठाना चाहिए। और भैया मैंने देखो अब पनौरों ने एक और अच्छो बड़ो उमदा सो गाना सुना था, ये को गाओ मन्ना डे और साथियों ने, जाए सुनवे ग्रांड लिखो है चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश साव, रेखा साव, कमलेश रावी, हिमांशु सेजल, स्वप्निल और साहिल ने। तो सुनाते हैं तीसरी कसम को मन्नाडी और साथियों का बहुत जो गीत।

0: बचवा दो कन्या।
1: तो भैया बहनर देखो अब चलवे की बिरिया हो रही है, सो लिए थे आप उनसे विदा, बिहारी की सी बिरिया हो गई, सो विदा लिए थे। सो ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी बीबी ब्यूटी क्वीन। लेखक हैं शरद सिंह और निर्देशक अजीमुद्दीन।

0: ओहो भाई, जरा मैं भी तो सुनूं कि आज इतनी सज धज कर जनाब की सवारी कहाँ जा रही है?
1: बस यूं ही।
0: फिर भी अब बता भी डालिए।
1: अरे वो आज सुकेश के घर पर एक पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ।
0: सुकेश भाई साहब के घर पार्टी? और उन्होंने पार्टी में सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं?
1: मालती मेरा रुमाल नहीं मिल रहा यार, जरा ढूंढना।
0: देखो बात नहीं बदलो, क्या सचमुच उन्होंने पार्टी में मुझे नहीं बुलाया?
1: ओफो, तुम तो जिस बात के पीछे पड़ जाती हो उसे पूरा जाने बिना पीछे ही नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, तुम जाननी चाहती हो ना, तो सुनो, सुकेश ने तो तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने ही कह दिया कि तुम पार्टी में शामिल नहीं हो सकोगी।
0: मगर क्यों?
2: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

0: किया गया और तीसरा पार्टी बेसिक ट्रेनर श्री प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। हैदराबाद में आज दक्षिण क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का सफल समापन हुआ। सम्मेलन के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के किसानों को सहयोग देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहार जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक अन्य लोग घायल भी हुए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है। वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा। वी शुड विन द एशियन गेम्स।
3: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
2: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं।
4: सॉरी डार्लिंग, देख रहे हो मैं अभी अभी जॉगिंग से लौटी हूँ और अब मुझे जिम के लिए निकलना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। प्लीज तुम ही नाश्ता बना दो ना, सब कुछ। ओके बाय डार्लिंग, बाय बाय।
5: अरे मालती, अरे मालती, अरे सुनो, अरे रुको तो यार, प्लीज। उफ, चली गई, अब मैं क्या करूं? अरे यार, मुझे तो किचन का का खा गा घा भी नहीं पता यार।
6: पापा।
5: अरे क्या है?
6: नाश्ता।
5: अब चुप भी करो तुम।
6: लेकिन पापा मेरा

0: बॉक्स।
1: अच्छा ठीक है, चलो बेटी मैं तुम्हें बाजार से लंच के लिए कुछ खरीद देता हूँ, चलो।
0: बाजार? लेकिन पापा बाजार तो अभी खुला भी नहीं होगा।
1: अरे तुझे इससे क्या, तू चुप कर और चल मेरे साथ।
2: हाय डार्लिंग, मैं कैसे दिख रही हूँ?
1: मालती ये तुम्हारे लंबे बालों को क्या हो गया?
2: लंबे बाल? लंबे बाल आजकल कौन रखता है डार्लिंग? मिसेस रॉबर्ट, मिसेस चड्ढा, सभी के बाल कटे हुए हैं। मैंने भी बालों को कटवा कर ट्रिमिंग करवा ली है और अब तो मैं स्लिम भी हो चली हूँ। कैसे दिखती हूँ मैं बताओ ना?
1: वैसे तो ठीक दिख रही हो लेकिन ये बाल।
2: ओहो, मैं तुम्हें ये बिल देना तो भूल ही जा रही थी, इनका पेमेंट कर देना डार्लिंग।
1: बिल? अरे काहे का बिल?
2: लो खुद ही देख लो।
1: ब्यूटी पार्लर के 1,000, जिम के 3,000, जॉगिंग सूट 1,500 का, और ये क्या है? होम फेशियल, फेस मास्क, लिपस्टिक, रूस, ये इन सब के 2,500। मालती मालती ये सब क्या है? अरे मालती तुम तो मेरा दिवाला निकाल दोगी है? अरे ये क्या कर रही हो तुम?
2: कुछ भी तो नहीं डार्लिंग, मैं तो सिर्फ स्लिम ट्रिम हो रही हूँ जैसा कि तुम चाहते हो।
0: पापा पापा पापा, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है और हाँ, और कोचिंग सेंटर की भी फीस जमा करनी है, कॉपियाँ भी खरीदनी है और।
1: अरे निक्की बेटे अब बस भी करो। मे आई कम इन सर? सर आपने मुझे बुलाया।
3: मिस्टर विनोद, आपके ऑफिस आने का ये टाइम है? पिछले कई दिनों से आप रोज देर से दफ्तर आते हैं।
1: सर क्या है कि बेटी को तैयार करके स्कूल पहुंचाने में देर हो जाती है सर।
3: मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, आप तो महिलाओं वाले बहाने सुना रहे हैं। दफ्तर टाइम पर नहीं आ सकते हैं तो छुट्टी ले लीजिए या फिर नौकरी छोड़कर घर संभालिए।
1: सर
3: सुनिए, अगर कल से आप लेट हुए तो समझिए कि आपकी नौकरी गई, अंडरस्टैंड?
1: यस सर।
3: आप खड़े क्यों हैं? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए।
1: सर सॉरी सर।

0: अरे अरे, ये भीतर से किसकी आवाज आ रही है? ये मालती किससे बातें कर रही है? हैं? दरवाजा भी उठका हुआ है, जरा ध्यान से सुनो क्या चल रहा है ये मेरे घर के भीतर, हैं? अरे अरे, ये तो अमित है। ये मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहा है? क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग? जरा सुनो तो।
1: चलिए हटिए अमित जी, आप बड़े वो हैं।
2: नहीं मालती, मैं सच कह रहा हूं। तुम क्यों विरोध के पल्ले बंधी हुई हो? कहां तुम इतनी खूबसूरत और कहां वो लंगूर? तुम उसे छोड़कर मुझे अपना लो, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें।
1: सच?
2: बिल्कुल सच, 100% सच। तो मैं तुम्हारी मंजूरी समझू?
0: ये क्या देगी मंजूरी तुझे? मंजूरी तो मैं दूंगा तुझे। मेरी बीबी को अपनी रानी बनाएगा है? तेरी हड्डी पसली एक ना कर दू, बेशर्म अपने दोस्त की बीवी पर डोरे डालता है।
3: इसमें बेशर्मी कैसी? तुमने हम लोगों को दिखाने के लिए ही तो मालती भाभी को ब्यूटी क्वीन बनाया है, फिर देखने दो ना यार।
0: यार यार, किसको कह रहा है तू? अरे तू तो मेरा दुश्मन है दुश्मन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
1: अरे अरे विनोद जी, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: रीमा भाभी, आप किचन में क्यों छुपी हुई थी?
1: ताकि आप मेरे पति अमित और मालती भाभी को कहीं सचमुच ना गलत समझ बैठे।
0: क्या क्या मतलब?
1: मतलब ये कि ये जो सारा नाटक आप देख रहे हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए रचा गया था। मालती तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन मैंने ही उसे समझा बुझा कर तैयार किया। अब आपको समझ में आया विनोद भाई कि बीवी ब्यूटी क्वीन बनने चल दे तो घर परिवार की क्या दशा होती है?
0: हाँ भाभी, अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या अब भी समझ में नहीं आएगा? अरे हजारों का चूना लग चुका है मुझे, और आज

0: तो बीवी से भी हाथ धोने की स्थिति आ गई थी। अरे इस ब्यूटी क्वीन बीवी से तो मेरी पहले जैसी बीवी ही अच्छी।
1: डार्लिंग, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि कल मैंने कॉस्मेटिक सर्जन से अपॉइंटमेंट ले रखा है और उसकी फीस
0: क्या?

बीवी ब्यूटी क्वीन। अभी आप सुन रहे थे शरद सिंह की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अजीमुद्दीन। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: संगीतकार उत्तम सिंह।
1: मुझको हुई ना खबर।
0: एक उत्तम जीवन।
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मीत ब्रदर्स अनजान के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा गीत, आवाजें मीत ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम है एक पहेली लीला।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम

0: आप सुन रहे थे फिल्म हवाई ज्यादा का गाना। गाने वाले कलाकार थे वडाली बंधु, सुखविंदर सिंह, लखविंदर वड़ा, रणदीप भास्कर, रविंद्र साठी और हर्षदीप कौर। इस गीत को लिखा था विभू वीरेंद्रपुरी ने और धुन बनाई थी मंगेश ने।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं कुमार सानू।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं संदीप नाथ का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला अंकित तिवारी ने। आवाज है केके की और ये फिल्म है रॉय।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म बेबी का गाना। गाने वाले कलाकार हैं मीट ब्रदर्स अंजान और अपेक्षा दांडिकर। इस गीत को मनोज मुंतशिर ने लिखा और धुन मीट ब्रदर्स अंजान की ही है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में एमएस धोनी फिल्म का गाना। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर

0: क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डंगू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए आरोप पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने अपने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ग्रिड नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने

0: और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान

0: मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वर्षम ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वर्षम ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वर्षम ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: लोगों को रेस्पॉन्स काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वर्ल्ड मेड वेटको ने कई देशों में बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, जिनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं। बुक्स में
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आप जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से
2: प्रसारित कर रहा है आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार

काला कपड़ा पहनूं नको, काला कपड़ा पहनूं नको, मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनूं नको, काला कपड़ा पहनूं नको, उजला कपड़ा पहनूं।

0: मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनू न को काला कपड़ा पहनू न को उजला कपड़ा पहनू न को।
1: दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है।

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लिज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों शबाना भी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत। इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी।

दोस्तों शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है, उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गौतम घोष की पार उन्होंने की थी, सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आज़मी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज़,

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मॉर्निंग रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड,

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शुभ को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवन

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

0: जल्द से फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी टेलर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हर फॉर्मूला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।